0: हाँ भाई, वहीं पे हेडक्वार्टर
1: बिहार।
0: फॉर सुनना।
1: बिहार
0: नाइन 2 0 7 7 1 7।
1: कितने के पॉइंट।
0: हाँ।